दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं प्रेम डायरेक्टर विनेश। जी हाँ, ये सैटरडे है। अगर क्राइस्ट चर्च में आप हो तो आपको तो पता है कि वेदर बहुत ही सुहाना नहीं है। इट्स क्वाइट सैड एंड क्वाइट बैड, और ठंड भी है और बारिश भी हो रही है, लेकिन आई एम श्योर यू आर कीपिंग वार्म। जी हाँ, थोड़ी ठंड भी है, वैसे भी हम कंप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज वी आर ऑफ कोर्स इन विंटर। तो आप चाय पीजिए, बड़ा भजिया खाइए और अपने आप को गर्मी रखिए और एंजॉय करते रहिए। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, लिसनिंग टू अस। और जो लोग हमें फेसबुक में हर वक्त देखते हैं, देन वी विल बी कमिंग ऑन फेसबुक लेटर। थोड़ी देर में हम फेसबुक पे आने वाले हमारे जो गेस्ट आज के हैं, दे आर गेटिंग इन द स्टूडियो। जी हाँ, हम आप हमें सुन रहे हैं फ्रॉम प्लेन से मीडिया मद्रास स्ट्रीट इन क्राइस्टचर्च। तो लोग जुड़ रहे हैं और थोड़ी देर में हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे बातें करते चलेंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा जिसके विषय में बात करने वाले हैं, इट्स अ बांसुरी, ए टेल ऑफ लव। जी हाँ, जो

तो टिकट्स यार दे सेलिंग फास्ट, जो इवनिंग जो टिकट्स इट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट, और जो कुछ टिकट्स बचे हुए हैं उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं, कुछ और जानकारी भी आपको देने वाले हैं, और जो लोग इनसे जुड़े हैं उनसे भी हम बात करते चलेंगे. इट इज़ प्राउडली प्रेजेंटेड बाय कथाकार चारू जी, जो ही टीचर जो क्राइस्टचर्च में है, ही इज़ गॉट मेनी स्टूडेंट्स, और दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ दोज रेयर ओकेशंस कि आपको मिलेगा देखने के लिए सच ए प्रोडक्शन. And you don't want to miss out. So it's happening on the 12th of September. It's not far off. Agar apne ticket nahi liya, then it is time that you buy the tickets. Kyunki kuch tickets bache hue hain. If you are late, then you might miss it. To chalo hum aage badhte hain. Hamare paas kuch songs bhi hain jo hum aapko sunate chalenge. Aur saath saath mein kuch aur jo jankari hamare haath mein lagenge, uske vishay mein bhi hum batate chalenge. Kuch aur bhi program hai. Haryali Teej, jise aapko pata hai, wo bhi aa rahi hai. Jo Shalini Gupta ka jo team hai, har waqt har year laati hai. So this time it's happening on 22nd August, which is I think a week away, or there is going to be happening in Templeton, yeah, Templeton Hall, which is very popular, jo 64K crowd mein, wahan bhi aap ja sakte. It's a free entry and it's from 5:30 PM to 8 PM, so there is the other event jahan pe aap ja sakte ho, aur bhi kafi jo program ho rahe hain, because obviously the numbers are growing, hum aur bhi jo events dekh rahe hain, many programs are happening. Just keep in touch jo Fiji Radio page pe hum koshish karte हैं कि जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है हम उस पर डाल देते हैं फॉर यू टू नो सो दैट यू डोंट मिस आउट. मुझे पता है कि भाग दौड़ में काफी बिजी होते हैं, पीपल मिस इट, एंड देन बाद में आप जो फोटोज वगैरह देखते हो देन आपको पता चलता है कि इवेंट हो गया है एंड यू हैव मिस्ड इट. और हम बधाई देने चाहेंगे सभी लोग जो आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मना रहे हैं, स्पेशली इंडिया गेनिंग द 80th ईयर हो गया है, सो सभी को हम बधाई देंगे. आज ही हम सुबह गए थे द सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज बाय हितेश जी, इट वॉज ब्यूटीफुल, काफी अच्छा. It was in Richmond and we are hoping कि आप सभी लोग having a good time. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, सॉन्ग कुछ सुनाते हैं, उसके बाद में जैसे हमारे जो गेस्ट जुड़ जाएंगे तो उससे भी हम बात करते चलेंगे.

जी हाँ दोस्तों, साथी है जलसा फिजी रेडियो। आशा है कि आप मजे ले रहे हो हमारे प्रोग्राम को, और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस फॉर द लास्ट 14 इयर्स। हमें भी आपका साथ बढ़िया लगता है, और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। और जैसे हमने शुरू में मेंशन किया है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बांसुरी, अ टेल ऑफ लव। जी हाँ, हम कृष्ण राधा की बात करने वाले हैं, और हमारे साथ है कुछ कुछ जो गेस्ट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो मोनिका जी है, एंड वी आर गोइंग टू वेलकम नीलेश एंड आदर्स। जैसे जैसे वो आएंगे हम उनको भी वेलकम करेंगे, और फिर हम जाएंगे फेसबुक लाइव, जहां पे आप हमें देख भी सकोगे और सुन भी सकोगे। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिमेनिंग टिकट्स। जी हाँ, टिकट्स आर गोइंग क्वाइट फास्ट, एंड वी डोंट वांट यू टू मिस इट। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ग्रैब कर ले टिकट अभी, बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि बाद में लोगों नो वी कम टू देम एंड दे डिडंट रियलाइज कि ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है। सो प्लीज डू लिसन एंड गेट योर टिकट्स व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज देयर। तो चलो हम आपको और एक जो गीत सुनाते हैं, और उसके बाद में होपफुली एवरीबॉडी सी, एंड देन वी विल start with our interview.

शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी

0: जी हाँ दोस्तों, साथी है चलसफी जी रेडियो में हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश। जो लोग हमें हमारे साथ में अभी फेसबुक में जुड़े हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं। जैसे हमने शुरू में मेंशन किया था, जो लोग हमारे साथ फेसबुक में थे कि हमारे पास जो गेस्ट है वो जुड़ रहे हैं, तो अभी आप वीडियो में देख सकते हो कि हमारे साथ राकेश इज हियर। वी हैव गॉट नीलेश फ्रॉम लाइम लाइट कंस्ट्रक्शन, मोनिका, जी हाँ मोनिका को कौन नहीं जानता है, एंड देन वी हैव गॉट प्राची एज वेल। इनसे हम बात करते चलेंगे और चर्चा करेंगे बांसुरी टाइल ऑफ लव, इसके जो पोस्टर आपने हमारे जो पेज है जलसफी जी रेडियो पे देखे होंगे, और इट्स नॉट फार ऑफ, बहुत दूर नहीं, इट्स ओनली 12th of September, और इसका जो डबल सेशन है, एक सेशन इज ऑलरेडी बुक्ड आउट, सो और एक सेशन में कुछ टिकट्स बचे हुए हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर। हम आपको बतलाएंगे कैसे आप टिकट्स ले सकते हो, और हम ये भी आपको बतलाने वाले हैं क्यों आपको टिकट्स लेना है, और अगर ये भी हम शायद बताएंगे उसके बाद में कि अगर आप टिकट नहीं लेते हो तो क्या आप मिस करने वाले हो। और हम जो राकेश जी, उसको स्वागत करेंगे अपने इस स्टूडियो में, हमने हमारे शो में आने के लिए शुक्रिया। एंड सेम विद नीलेश जी, लाइमलाइट कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स घर बनाने का आप जो काम करते हो, और वी हैव गॉट मोनिका हु कैन एक ही टाइम पे वो बहुत काम कर लेती है, शी कैन लुक आफ्टर आवर फैमिली, उसके जो दो बच्चे भी है, एंड देन शी कम्स टू अस, हमारे भी कुछ काम रहता वो भी कर देती है, एंड देन शी परफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी संभाल लेती हैं, और अगर बात हमें कराना तो हमसे बात भी करा लेते हैं, एंड वी हैव गॉट प्राची एज वेल, उससे भी हम बात करते चलेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद राकेश विद यू फर्स्ट। तो अभी तक आपका ये जो शो है कैसे जा रहा है, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू प्लान? चारू जी, शी इज हैप्पी विद एवरीथिंग?
1: यस, वी आर रियली हैप्पी, एंड thanks to each and everyone, it's like audience and the person who bought the ticket and to come on the show. I will do a little bit brief about the show, like for the matinee and the evening show.
0: Yeah.
1: In the last Monday, the evening show was sold out. Then uske baad hamare paas bahut sari inquiries aayi ki hame ticket chahiye, hame ticket chahiye. Then uske baad humne thoda sa apna seating arrangement ko और एक्सटेंड किया, और उसमें हमने 20 टिकट्स और एक्सटेंड की। तो दिस मॉर्निंग आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे, मोनिका जी एंड कथाकार टीम ने परफॉर्म किया, और वापस आए तो देखा कि हमारा वो एक्सटेंड जो हमने की थी सीट, वो भी सोल्ड आउट हो चुकी
0: है। वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़, कांग्रेचुलेशंस।
1: तो सभी बधाई के पात्र हैं। और मैथनी शो के लिए अभी तक हमारे पास जो फाइनल जो नंबर्स हैं वो 42 सीट्स अभी वैकेंट हैं, होपफुली अभी 26-27 डेज अभी हैं, तो जितना जल्दी हो सके, टिकट्स आर सेलिंग टू फास्ट। एंड बांसुरी के लिए अगर थोड़ा मैं आपको और बताऊं कि इसमें क्या है, क्या होने वाला है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारी टीम से। बांसुरी इज बेसिकली, दिस इज ए फिक्शनल डांस ड्रामा थिएटर प्रोडक्शन, मोर देन 55 परफॉर्मर जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें, हमारे मोर देन जो भी हमारे कथाकार स्कूल्स से स्टूडेंट्स हैं, उसके साथ हमने कीवी इंडियन थिएटर का कलेबरेशन है उस, और गरबा डांस रिदम ग्रुप है, और हमारे लोकल आर्टिस्ट जो कम्युनिटी आर्टिस्ट जो अपना पैशन फॉलो करते हैं, उनके साथ सबको कलाब करके एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले हमने रिक्वेस्ट की थी अपने क्रिएटिव डायरेक्टर विष्णु श्री कुमार जी से। तो चारू ने और विष्णु श्री कुमार जी ने पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया, तो उसके बाद हमने

0: टीम को एक साथ एक जगह पे बुला के और सबको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दिया कि अभी डांस है और उसके बाद माइम है और थिएटर है, डायलॉग्स है, इमोशंस है, ड्रामा है, फाइट है, कुछ सस्पेंस भी है. तो वो आप लोग टिकट बुक जिन्होंने कर लिया है तो वो वहाँ पे देखेंगे. थैंक यू. आप बाकी की डिटेल्स कथाकार के बारे में रिक्वेस्ट करूँगा मोनिका जी से.
1: जी हाँ, और इससे पहले मोनिका जी के पास जाए, देन ये अपने उसमें बोला वायलेंस, आई मीन कुछ फाइट्स वगैरह भी है.
0: नहीं, जस्ट वायलेंस लाइक जस्ट टू बी एंटरटेनमेंट पर्पस. इज द मोटिव ऑफ दिस वन इज इट जस्ट नॉट लाइक ए प्लेन शो.
1: जी,
0: सो इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर. इसमें डांस है, भरपूर डांस है, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स हैं, प्रॉप्स हैं, साथ में बहुत अच्छी डायलॉग्स डिलीवरी भी हैं.
1: जी,
0: तो इसीलिए उस फाइट सीन को डायलॉग डिलीवरी के साथ हमने मर्ज करके तो एक बहुत अच्छा इनोवेशन तैयार किया है. तो आप होप ऑडियंस लाइक करेगी.
1: कैन यू नो कि जब वो जो सीन रहेगा उसमें कौन कलाकार है?
0: हमारे के इंडियन की भी इंडियन थिएटर के कलाकार भी हैं और कथाकार से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं. डांस के लिए स्पेशल हमने रिक्वेस्ट किया था गरबा टीम से.
1: जी,
0: तो वो भी परफॉर्म कर रहे हैं. बाकी स्टोरी अगर मैं सारी यहाँ बता दूँ
1: वही तो हमारा काम होता है ना, ज्यादा ज्यादा
0: तो ऑडियंस फिर नहीं मजा आएगा उनको तो. लेकिन स्टिल बहुत सारे क्या कह सकते हैं उसको, मतलब आप बहुत सारे इफेक्ट्स जो देखोगे स्टेज के ऊपर जो आपको नहीं पता लगेंगे
1: जी.
0: आप मजा आएगा आपको.
1: जी, और मोनिका जी आप बताइए, आप जब स्कूल डेज में थी ड्रामास वगैरह में पार्ट लेती थी?
2: बहुत.
1: जी हाँ,
2: बहुत. आप और उसके शक्ल देख के ही बता सकते हैं.
1: जी हाँ, और उसके बाद में ऑब्वियसली जब आप क्राइसिस में आई, डिड यू लाइक डू एनी ड्रामास हियर?
2: नहीं, मैंने ऑनेस्टली क्राइस्टचर्च में आने के बाद कोई.
1: सो इट विल बी वेरी आफ्टर सो मेनी इयर्स.
2: यस,
1: तो कैसा आपको लग रहा है? फील
2: आई एम सुपर एक्साइटेड.
1: जी,
2: और मुझे बहुत ही नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग भी आती है जब भी मैं परफॉर्म करती हूँ. इट टेक्स मी बैक टू माय कॉलेज एंड स्कूल डेज जहाँ मैं बहुत एक्टिव थी. तो यहाँ कथाकार ज्वाइन करने के बाद इट हैज गिवन मी अगेन अनदर अपॉर्चुनिटी कि मैं स्कूल का पार्ट होके शोज में पार्टिसिपेट कर सकूं. और ये जो बांसुरी, जैसे राकेश जी ने आपको बताया बांसुरी आ रहा है, आप जैसे इसके बारे में पूछ रहे थे, तो ये कथाकार्स और कीवी इंडियन थिएटर ग्रुप के साथ मिलकर, और बहुत सारे लोग हैं इसमें, सिर्फ दो ही टीम्स नहीं है, बहुत सारे लोगों ने कोलैब किया है. और मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि दिस इज अ राधा कृष्ण की स्टोरी, सभी ने सुनी हुई है, आप सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं अलग अलग तरीके से. दिस इज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ द आर्टिस्ट. तो वो कैसे इस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आप थिएटर में देखोगे, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, एक्शन. सो सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर. नो,
1: डेफिनेटली आई एम प्रीटी एक्साइटेड विद द फाइट सीन. राकेश जी जरूर हम देखने आएंगे. और बिफोर वी टॉक टू प्राची, तो मोनिका, हाउ डज मयंक फील? पहले मुझे पता है कि आप शायरी बोलना शुरू कर देती थी, अभी आप शायद डायलॉग बोलना शुरू कर देती होगी.
2: नहीं, शायरी मेरा अभी भी मेरा पैशन है, पर मैंने अभी उसको सेव करके रखा है
1: बाकी के लिए. आप सुनते रहिए. सही है जी. हाँ प्राची, आप बताइए, आपका किरदार इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कौन सा है, आप क्या संभाल रही हो?
3: थैंक यू विनेशी फॉर हैविंग मी. मैं प्रेडोमिनेंटली एडमिन साइड देख रही हूँ, मतलब कि ऑल आर स्पॉन्सर्स, उनके साथ रिलेशनशिप बनाए रखना, उनके साथ कम्युनिकेशन यू नो ओपन रखना, कीप फॉलोइंग देम अप. वो नीलेश जी बताएंगे कितना उनको मैंने बैजर किया है, ऐसे आप कब भेजो, आपका सिग्नेचर अभी नहीं मिला, अभी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. बट नो, इट्स बीन रियली नाइस, और ऑल ऑफ आर स्पॉन्सर्स हैव बीन रियली अमेजिंग. तो really looking forward to meet everybody. आज तो निलेश जी से मुलाकात होगी, but I'm looking forward to meeting all the others as well.
1: जी हाँ. और प्राची जी, किसी ने किस स्पॉन्सर में अभी तक अपना जो डिपॉजिट नहीं पे किया है?
3: Everybody's good.
1: Okay.
3: अभी मुझे उनसे सबको मिलना भी है ना उस दिन, तो I have to save face.
1: जी हाँ.
3: Everybody's been doing really well.
1: जी हाँ. Maybe you're doing a fantastic job. Rakesh, you've got a good person there who makes you a business. Now, one of the main, hum kahenge, ingredient to this, because unless you have finance, it's very difficult to do anything because sabhi cheezon mein paise lagte hai. Hiring a theater and there's so many jo overhead cost rehte hai. So we do know that. And we've got here Nilesh, who is from Limelight Construction. And thank you, Nilesh, and thank you to all the sponsors, because bina sponsors ke to we won't be even having this discussion. So thank you for doing that. Aap bataiye ki abhi aapka jo market kaise chal raha hai construction wise.
0: Firstly, thank you to Kathakars and the event organizers, Charuji and Rakeshji, for allowing us to be part of the event. And it's our pleasure to support them in any shape and form we can. It's good to see our culture being replicated in different forms, collaborating with local groups. So it'll be exciting. We are super excited to see the show and to show the young generation that what our culture is all about.